महला पहला जे मोहका कर्म है कर्म है पितरी दे जे कर सुतक मनी है सब ते सुतक होए। श्लोक महला पहला जे कर सुतक मनी है सब

है जिथरिया सकुए सुतक क्यों कर रखिए सुतक पवेर सुए नानक सुतक क्यों न उतरे

पहला सुचा फोए सुचे बैठाए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट्यो जाए सुचा हो के जे में अलग अपन सलोक होती जाए।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नारय असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर साद परया ते पी वह संत करहे मन मज्जन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल ठाकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे जाक सिमरन हुए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निध पाव बहुर न तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास ते आवहु ठाकुर कहो मान तन जियरे मुखी शांत पावह होवह मन शीतल अगन ना अंतर तुखी गुर नानक कौ प्रभु दिखाया जल थल त्रिपवन रुखी विसर नाही दातार आपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहिले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूरे अर सहु कुर सहु चटिया
तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते सा सिर साहा दैसा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहु सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोहे महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखो तमां सब बिन से दालद दलघा

सुख संग हर हर नाम भजो पुरखो तम सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समंगा मेरे मान पाज राम नाम अत पिरघा मैं मन तन अर्प तरयो गुरे आगा सिर वे चलियो मोल महंगा रहा नर पत राजे रंग रस मान बिन नावा पकड़ खड़े सब कल घा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फल घा हर राख राख जान किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतिपल घान दर्शन संत देहु सुख पावा प्रभ लोच पूर जान तुम घान तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मौका की जादान हर निमघान जन नानक नाम मिला सुख पावे हम नाम विटहो सद घूम घा

कौ की जदान हर निम घान, जन नानक नाम मिला सुख पावे, हम नाम विटहो साध घुम घान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोही महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिनसे दालद दलघा, पाओ जन्म मरना मेटेओ गुर सबदी, हर अस्थिर सेव सुख।

उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पौड़े बड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेकना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस जगता नानक दास रदास तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत देव से रात दुई दाई दाया खेले सगले जगते, जगते।

मीत के करतब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जैस किछ करना सो हमरा मीत।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुखत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना हे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मुह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਾ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दोस्त सवै तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी वसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संघरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझ जो करियहो रक्षा राख लिहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपार जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्वकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूप आंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दोष्ट जीते उठवा ते उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार त्यै है ताकि काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहें सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताकि ताप तनक मह हर हो
रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभार, काल फांसते ताहे उबार। जे

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओम राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओम सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जाने ओम श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं न कहे ओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जैस दियां इह वडियाइयां कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

हम सर दीन दयाल न तुम सर, आब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मान, जान को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रवदास आस लग जीवम, चेर भयो दर्शन देखे, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परियारे, दंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जान, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया,

पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेवियै, अहनस सहज दर्शन परसै। गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमंदी, नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सचे पात सहा, मल जन्म जन्म दी। सजन सच्चा पात साह, सिर साहांद जिस पास बैठिया। सोही है सबनांदा, सजन सच्चा पात साह, सिर साहांद जिस पास बैठिया। सोही है सबनांदा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला पंजवा, औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रतपाले। औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरत संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रतपाले। प्राव स्यों लाग रहयो मेरा चीत, आद अंत प्रव सदा सहाई। धन हमारा मीत, रहा मन बिलास भए साहिब के।
चारज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक।

मन बिलास भए साहिब के चरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पारगंग हस्त खाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीसरा सर्व रखिया गुरुदयाल है पै दुख विनाशन है भगत बशल अनाथ नाथी सर नानक पुरख उचित है। बिलावल महला पंजवा ताती वौ न लगई पार बिम सरनाई चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगै न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तन रखनहार सा ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभु पे सहाई सोहिलारा गौड़ी दीप की महला पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद जयकर कीरता किया करते का होए विचारो कृत कर गावो सोहेला सिवर हो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला हों बारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालिन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन सीसड़िया जो होवै सैब स्यो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हार सिमरिया नानक से दया बन रागासा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बड़ाई तोय रहाओ विश्वे जसिया घड़िया पहरा थिति बारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के कीते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए सब खंडा तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोही सहस पाद बिमल नान एक पाद गंध वेन सहस्तव गंध विचलत मोही साम जोत जोत है सोए तिसद चानन सामै चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कावल मकरंद लोभत मन अंगन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारं कोई जाते तेरे नाहीं बासा
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ।

लुटने आसरियों के आसरा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो, तन तन बाणी गुरु

गुर का शब्द तरे मन के ते गुर का शब्द तरे मन के ते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन सनक सनंदन तपसी जन के ते

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए

कौड़ी आप नहीं आप साजी आप इंद्र चोना दोई कुदर साजी एक आसन उठो चा दादा करता आप तू तुस देवे करे पसा तू जोना सबसे दे लैसे हैं जिंद कवाओ

का किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवार रोले बहुत अनंत लाटू मादानिया नंगा।

दे मंगै सह सागुना सोभ करे संसार। चोरां जारां तै कुड़ियारां खराबां वेकार, एक हुंदा खाए चले ऐथा उतना पेकाई कार। जल थल जियां पुरियां लोआया कार आया कार।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियो उन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिलिया इसका मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चुकलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार इकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगत लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जंपर के लिखे पवत पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुर गौहर दरियाओ पलक डुबनते तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतार उचरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परे
2: चित चितों अरदास कहूँ पर कह भी न सकूँ सर चिन तुझ बात सात संगत हों तकों तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूँ गुरु अमरदास कारण करना

0: जीव तो रखे तिव्र हो। पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्तें लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उड़नत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावे कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखो है पंडित मिठे बरस एक हो फिरो किन्ह ना परचों लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लग गए तिन के गुणों क्या कहो गुरु ने मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव रहो जीव तू रखे तिव रहो।
1: पहर समाद सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ो त्रम तनख कर गए हो भगत सीलै सर लड़ो पै निरपो हर टल मन शब्द गुर ने जा गड़ो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंडो पलो पुहाल ते ज्योतना नृपत नाथ नानक गबर गुर अमरदास सच सल भण तैं दल जितो एव जुद कर।
2: कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै खबजन फल उन्हें

लाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ के फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ के फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ ना देई लिव लागण जिने हर के चरण विसारे जग जीवन दाता

रहम। तू दयाल दया पत दाता, के आए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते होए, ऐसा आँख बखाने गोर मुख हो सो मुकत कहिया, मन मुख बंद विचारे सो जन मुकत जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले तेन की गहन गत कहीं न जाई, सच्चा आप सवारे।

स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नू अपने दारों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावान पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी सब को आखी अपना जिसनाई सोचन कड़ी है किता पु अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है तो जागता कायदगार भंडी है मंदा किसना खे परखर हो पूजी है मूर्ख।

पौड़िया पे ही करना क्यों कला पे ही तय धारी है, देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है को साहे मनो में सारी है।